0: अब हाम्रा सुन्टीबाटी कृषि विशेष रेव कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला हुइबा हमार प्रश्न अपना जवाब प्रश्न असिनबा राष्ट्रिय धान दिवस नेपालमा कौन महिना हो कै गते मना जाए प्रश्न फेक खरा राष्ट्रिय धान दिवस नेपालमा कौन महिना हो कै गते मना जाए एसएमएस मसेना उत्तर पठाका सहभागी बन सकी यी प्रश्न के उत्तर अपनाउँगत जनलबाती कलसे 98583961 मा आफ्न नाउँ ठेगाना सहित एक हप्ता भित्र एसएमएस मसेना उत्तर पठाका सहभागी बन सकी सही उत्तर पठाइल फुकनसे एक जहान गोला पठासे विजेता छानका कार्यक्रम के तरफ से एक प्रतिशत पौधा देने बाती
1: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सेकल पाँच अपन मनमा लागल विचार कृषि खेती के विषयमा कोनो प्रश्न ओ जिज्ञासा हुइल कलेसे अपने हुक्र अपन फोन मसे कह सिक्ने बाटिए ओ एसएमएस इमेल मसे फेल लेखी सिक्ने बाटिए अपन जवाबमा विचार प्रश्न धरकलाई कृषि अनुसन्धान परिषदके पैसा निलग्न फोन नम्बर 1135 डेलक निर्देशनके आधारमा रेकर्ड कर सिक्ने बाटिए पुस्तक रेडियो टाइगरके सम्पर्क नम्बर 0484041888 ओ मोबाइल नम्बर 98580309161 फोन कैक रेकर्ड कराई ओ लिखाई फेस सिक्ने बाटिए पुस्तक रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com मा फे अपन जिज्ञासा पठाई सिक्ने बाटिए
0: लिटा रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भागमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन हो कृषि विज्ञ से लिहल सल्लाह सुझाव ऐना हप्तामा अपनाइस एक जिना कृषि सम्बन्धी ढेर जानकारी संग और मेरमेरी गतिविधि फैलेक ऐना भागमा ध्यान होने नहीं बा कार्यक्रम का ऐना भाग के न सुनती रवि कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह फेना लिख कर पठिने बाटिकना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संग्रह संघरिया आरती ओ मैटिकाराम फिना विदा हुई राम राम नमस्कार।

0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: लोक लहरी
3: उज्यालो रेडियो नेटवर्क मा यो हो लोक लहरी

Radio Tiger Studio Time. यति बेला अपराह्नको 4 बज्यो। गर्जन सधैँ बाघ झैं, रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।

0: गर्जन सधैँ बाज झैं रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।

0: Radio Tiger Studio Time. यति बेला रात्रिको 8 बजेको छ. यस टाइमचेकका साथमा नवजीवन पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली भरिगाउँ बजार बर्दिया.
1: ये है आपका रेडियो रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज. वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया.